0: આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર છે. હવે બરોબર 6 વાગે હિન્દીમાં સમાચાર સાંભળશો, જે અમે દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી રિલે કરીશું.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં આકર્ષતા સિંહ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं. राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया. श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी. इटली में भारत के राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण

0: दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को

0: सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली और ये प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी में पूछ केंद्र पर थे सांबुशो आज में विचार बिंदु मायानु स्वरूप पठन रचना दवे।
3: विचार बिंदु
4: माया छे ते त्रिगुणात्मिका छे अंधकार रूप छे भगवान नी शक्ति छे अने आ जीव ने शरीर तथा शरीर ना जे संबंधी तेमने विषे ममत्व करावनारी छे। माया छे ए परमात्मा ना मिलन मा जीवात्मा ने माटे अवरोध रूप बनीने रहेली छे। अर्थात जीवात्मा अने परमात्मा वच्चे पर्दारूप बनीने रहेली छे। मायाना पर्दा ने कारणे हूँ आत्मा छू अने सर्वदा देहथी पृथक छू आ रीते जीव प्रकाशी शकतो नथी। पण हूँ मनुष्य छू, हूँ देव छू, हूँ विद्वान छू, हूँ सुंदर छू आ रीते देह

0: पार्टी है जी रचना कल्याण टकु भाई भारत में कंठे हमें आप सांभी
1: अन्न सलामती कायदा हेठळ अंत्योदय राशन कार्ड धारकों ने व्याजबी भाव की दुकाने थी सरकार द्वारा दर महीने 25 किलो घऊं 2 रूपया न भावे तथा 10 किलो चोखा 3 रूपया न भावे तथा अग्रता धरावता कुटुंबों ने व्यक्ति दी प्रति मास 3.5 किलो घऊं 2 रूपया न भावे तथा 1.5 किलो चोखा 3 रूपया न भावे अनाज न मळे अथवा ओछो अनाज मळतो होय तो जिला निवासी अधिक कलेक्टर ने फरियाद करो। मध्यान्ह भोजन केन्द्रों पर थी तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर थी सरकार द्वारा नियत मेनू मुजब गुणवत्ता सभर आहार पूरता प्रमाण में न मळतो होय तो मध्यान्ह भोजन केन्द्रों अंगे की फरियाद माटे जिला ना निवासी अधिक कलेक्टर ने संपर्क करो तथा आंगनवाड़ी अंगे की फरियाद माटे जिला पंचायत ना जिला फरियाद निवारण अधिकारी नो संपर्क करो। अने जो आपने तेमना निर्णय थी संतोष न होय तो गांधीनगर नी गुजरात राज्य अन्न आयोग नी कचेरी ने पण अपील के सीधी फरियाद करी शकाय छे। कोई पण नागरिक भूख्यो न रहे ते माटे प्रतिबद्ध गुजरात राज्य अन्न आयोग द्वारा जनहित में प्रसारित।

वस्ती गणतरी ना प्रथम चरण में घर यादी और मकानों की गणतरी एटले के तमारा मकान की गणतरी करशे। चलो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए और विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

परमार केन्जी नाथो बहना स्वर्मा गवैली भवानी दास की रचना साथ आज अर्चना कार्यक्रम अहीं समाप्त थयो। प्रसारण आकाशवाणी पुष्कंद पर करवामां आव्युं।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाद उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काट कर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है। रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके। यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है। शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता। इन भुजाओं को देख जिनसे

अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोली, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: همینطور سامریکا حتی شیره هم جدید مانزگان برسرین آقشانیم پوشگنده پرتی گروه ما آبیم حوی چباگینی پنچان منیدی سانسکرت ما سماچار آمی دلی گنده پرتی ایلی کریشون
1: ایم آقشانی سمکتی وارتا هشنیم تام پرواچکا دکتر گایشا هیلی भारतं तथा नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड इत्यादि देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार राजनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयन् घोषणामेतां कृतवान्
2: आधुनिक में भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत

0: प्रतिशत नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में भारत की ग्रोथ स्टोरी में योगदान दिया ही है। साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे भवन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समिते अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, वैजयन्त पाण्डा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति। यद्धि 73.8% किलोमीटरतः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुम्बई इण्डियन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्वाजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के

0: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना पहली जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 72,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय ने आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर में जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक पर शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said, "The PM's visit will provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community." She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the 3rd Indo-Nordic Summit. This is the final leg of his 5-nation tour. Only yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd Indo-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
0: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी

आकाशवाणी भूज समाचार विरल राणा वाचे छे। नमस्कार। एक राष्ट्र एक चूंटणी मामले रचायेली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ना सभ्य गुजरात में मुलाकाते छे। पीपी चौधरी ना वडपण हेठळनी जेपीसी ना सभ्य गांधीनगर में मुख्य सचिव एम के दास, राज्य पोलिस वडा डॉक्टर के एल एन राव सहित उच्च अधिकारी चर्चा करी। गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत में जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी कहूं समिति गुजरात हिस्सेदारों ने सांभी गई काल बैठक में बड़ी चूंटी एक साथ मत सबे व्यक्त कर एक राष्ट्र एक चूंटी कारण देश 7 लाख करोड़ रूपया बचसे। आ समिति आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल विविध राजकीय पक्ष आगे टोचना अधिकारी बैठक कर अभिप्राय मेलवशे। राज्यना खेडूतोने समेडो तरीके कृषि साधननी खरीदी माटेनी सहाय वधारीने 60,000 रूपया करवामां आवी छे। राज्य सरकारना आ निर्णय अंगे कृषि मंत्री जीतू वाघाणीए कहूं खेडूतोनी रजूआतने ध्यान राखीने किसान परिवहन योजना हेठळ 25,000 रूपयानी सहायमां वधारो करीने रकमने 60,000 रूपया करवामां आवी छे। જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ નાના સીમાંત તેમજ મહિલા ખેડૂતોને હવે 75,000 રૂપિયાની સહાય મળશે। શ્રી વાઘાણીએ વધુમાં કહ્યું સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં નાના અને મધ્યમ ખેડૂતો દ્વારા ખેતીના વિવિધ

0: में मशहूर कर दिया। राइट, और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिका और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी में सोलर

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातें करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787

0: इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा भारत में बेल का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ते हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अलंकारा प्लाजो नयादी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्विक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार

0: सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
2: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य

0: उन्होंने भारत नार्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए

0: and emergency responses.
1: यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष के महिला

0: अगर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरू के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पहले डिफेक्ट रिपोर्ट मदद से प्रविष्ट के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि नया इंडियन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर अन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचार के साथ है आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरा दिन भी देश का

0: आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसभा सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ और डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्वे समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की टी यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली

मछलियों को स्वाभाविक और राजनीतिक सहयोग भी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान दैनिक भास्कर में है।

ध्यान कार्यक्रम सुन रहा पांच मेरे भाव के चंदू बाजा जय जय करी ने राम राम राम राम राम राम मेरे भा ध्यान कार्यक्रम जी गाल करियो तो हेवर गर्मी ने लुख बराबर जेड़ी पेती पांजे कच्छ जी तासीर ता एड़ी कड़ी जो गम्मे तेटलो तत्तो ताप वे लू लगदी वे पराग जो ही के थदक थिए तेड़ी धधक थेरे भला तडे डी जो हेड़ी लुख में चोपा चेड़ा बोल जी पखी ही मेरे के रखोपा डेने जी पांजी फर जाए थिए एतरो हेन बोल जीवला पा किक हेड़ी गर्मी में करी छोटनो ने घाल करियो हेड़ी गर्मी में मारू के की स्वस्थ रोणो की निरोगी रोणो तो गर्मी ने लोक से शक्य वे हेतरो बचो पानी पीते जो जोर रखो बार जो खादे जो ओछो रखो शरीर नेमरो हुंदो तो मेरे खासो ने जीण जीए जेड़ो लगदो ने टेम सर खादे पीते जी ने सोमे उठे जी आदत से पा निमराई अचे इतरे ज चेता ना कटाणे ते निंदर टाणे ते जागणो ई सठो आचार तो निमराई जो डियो प्रगटे मादा न पो अविसार इतरे हेवर गर्मी से ने लोक से पा की बचो ने ऊ पांजे हथ में आए हाने अज ही गाल रयान कार्यक्रम में इतरे केणी पेटी का अजे रयान कार्यक्रम में हेड़ी ज गाल बोल सुनदासी ने ही गाल बोल करेला पा भेरा जोड़ाना आई डॉक्टर जेपी केसराणी साहेब ने गाल बोल जो मथाड़ो आए गर्मी अने लू मा बाळकोनी सार संभाल हेन विषय ते गाल बोल कहिंदा डॉक्टर जेपी केसराणी साहेब जो को पिंड बच्चे जा खास डॉक्टर है तो हेड़ा बाल रोग निष्णात डॉक्टर केसराणी साहेब जी गाल बोलता जरूर थे सुनदासी पाचो कार्यक्रम जी शुरुआत करी भजन से ने सुनो देव जी जयमल महेश्वरी जी आवाज में ही भजन।

0: आईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत।

0: अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर, श्रोताओ आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
0: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
0: श्रोताओ, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
0: जी
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओ एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम दि क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
5: I am fine, ma'am. How are you, ma'am?
3: I'm good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, pets are so lovely.
3: Right, Soham.
6: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But How do you know that your dog loves you?
6: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
7: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
8: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Then parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Yes, sir.
3: Okay, I'll give you a clue. It calls. Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes.
8: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I'm now beautiful. He danced and said. The other crows. Laughed at him.
4: Oh, what a fool you are.
10: Beautiful in black. We love you. For what you are.
3: So children, now listen to the same poem in a lovely song.

0: हरा झुका।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: दादाजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकर पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, ये खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल।

0: ये मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश
2: शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
3: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
3: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है और उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
3: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
3: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
3: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
3: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चले?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
1: नहीं बेटा चलो बेटा।
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूँ?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं, तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
0: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
4: हाँ दीदी, मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: ईटी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग
1: उमंग। हमने जयपुर समृद्धता प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जिला प्रायोजक था एनसीईआरटी प्रसारण आकाशवाणी पुष्किंद पर करवा।

है प्रश्न दिल मेरा ओ नाज़िनी, करीब आ नजर मिलाओ नाज़िनी। तू जो कहे यादों की आसमां से चांद को उठा।

पुता तो नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, हसीन हो पुता तो नहीं हो, रुको रुको

अदा भी एक कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। चाल बेमिसाल है, अदा भी एक कमाल है, मगर सुना है आपने कमाल को सवाल है। इसलिए तो कहता हूँ अक्सर के ना चलो हो।

0: होता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। ये वास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का। मैं आदमी हूँ काम का, जी साथ ले चलो तीन हो, तीन हो तो साथ नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो, तीन हो तो साथ नहीं हो, रुको रुको हवा तो नहीं हो।
1: ना देखना ये गीत में आप समझ आए थे मुकेश न्यूज पर मनोरंजन कार्यक्रम आकाशवाणी ना भूज केन्द्र पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें आज संगीतकार हंसराज बहल ने पुण्यतिथि पर विशेष फिल्म गीतों आप सांभळी रह्या छो। आवो हवे सांभळीए लता मंगेशकर ना स्वर में गवायेलू फिल्म चिंगेज खान नुं आ गीत।

0: आज वाली मम्मी तमे आ राशन कार्ड लईने उतावळे।
1: अरे बेटा राशन कार्ड मां नाम खोटू आव्यु छे, हवे कचेरीए जवुं ज पड़शे।
0: अरे मम्मी क्यांय नथी जवानुं, आ जुओ।

ये जो आप सांभ लता मंगेशकर ना स्वर में आया जीवन मनोरंजन कार्यक्रम पूरा करने रजा आपशो। आज संगीतकार हंसराज बहल ने पुण्यतिथि पर विशेष फिल्मी गीतों आप सांभी रहा था जेन प्रसारण आकाशवाणी पुष्केंद्र पर कर कच्छी कार्यक्रम वाबीडी बोल कार्यक्रम प्रस्तुति पल्लवी माने।

0: बोल कार्यक्रम प्रस्तुति पल्लवी माले का। अच्छा सुनो भाभी जा बोल।
1: आओ आज रेडियो दोस्त पल्लवी माणिक स्वागत करी आज कच्छी कार्यक्रम बाबू ने जो बोल हम कार्यक्रम में अवारनवार कच्छ जी घर में कच्छ जी महिमा अने कच्छ विषय जी अवनवी गाली करें कच्छी बोली अने कच्छ के अगे वाले पाने प्रोग्राम में घनी मेहनत करूँ था तो अब अड़ी जी गाल गई है आई हुआ मिया मिठी माठ लकड़ी कच्ची चौबक है तो तुम भी सच पर गाल करो तो मारू चाहे कि चुप रहो तो घनी बड़ी मुश्किल रुचि थी गई थी तो ये गाल कैरी थी अने ये चौबक कैरी थी तो ही इनकी गाल पाने करे बरायो तो ये गाल करो तो पहला पाकड़ो कच्ची गीत सुन गया।

खासी मजाजू गीत सोया सी तां अराज भाई अबला कोली जी सुनाए अने हाणे तां पंहिंजी ॻाल्हि अॻियां वधायूं क मुनिया मिठी माठ एटले चुप रहणु सौथी सारो आहे त हुन हिकिड़ी वार्ता आहे के हिकु यार हिकिड़ा धणी वारी हिन जे घर में ॿोराज कजिया थींदा हुआ धणी जो स्वभाव ॿोरो आकड़ो हो त रोज राति जो ॾियारू ताणी धणी रसोई में वंग कढे ऐं कारियारू थिए ने घर वारी पण सामा जवाब ॾे हिते रंधल भाई पण पियो रहे ऐं मोर माण्हू रुखिया सुम्ही वेंदा हुआ त हिन गाम में हिकार साधु महात्मा आया अने साधु महात्मा ख़ासी ॻाल्हियूं सिखाई था अने ख़ासा उपदेश ॾियूं था अहिड़ी ॻाल्हि हिन भाई पण सुणे त हिन भाई कीअं थिए त हल न ऐं पण मुंहिंजी जेको व्यथा आहे मुंहिंजी जेको तकलीफ़ आहे ऐं वञी अने साधू खे ॻाल्हि करियां त साधू हुनखे कंहिंखे सलाह ॾींदा त महात्मा वटि हीअ भाई पण वई अने पंहिंजी ॻाल्हि जो वारो मंगई के हाणे हिन ॻाल्हि जो पूरो कयई अचे मुंहिंजो धन रोज़ अचे अने असीं ॿ अहिड़ो रोज़ ऐं रोज़ रंगिया धाणी लाई वञे था असीं खाई नथा सघूं सुख से त महात्मा चए की इन करे भाई ऐं तोखे लाट में लाट वटाए वठायां की हिकिड़ी बाटी आहे अने हिन आऊं दवा विझी ॾिनी आहे जॾहिं तोखे जमी घरे अचे अने जमी लॻे तॾहिं तोखे हिन बाटली में थी मो ढक दवा पी ॾिने जी अने जा सूदी जमी न वञे त्या सूदी मन में भरे रखणी टी की मां पुछी पंहिंजो जवाब तूं जमी खे पुठी ॾियूं त ॿाहिरि चए की ठीकु आहे त ॿाहिरि की त लाट घुमी ॻाल्हि जॾहिं घुमी घरे अचे त हिनखे चई ॾे की भई हाणे आई दवा पीआं थी अने पोइ घणो बंदि रखी ॾे धणी जमी कच फिराउ करे ही आहिनि पंहिंजी रस में मिठो जजो आहिनि ही आयो न ती आयो न तेल लॻण वधिया आहिनि कीअं पण कॾहिं न घणा वॾा उका कढे ॿाहिरि मुंझ मुंझ भरे पर हिनखे यादि अचे की भई साधू महात्मा चयां आहे की विच में ॿोली जो न आहे एटले ॿाहिरि त वीचारी ख़ुशि मुसी रहिया अंदरि अंदरि अने अठवाड़ो खनि हीअ उपाय करे जंहिं जीती करे उहो खाई ॻणे अने खाई ॻणे अने पेट भराए रहे एटले माण्हू खे संतोष वरी वञे अने झगड़े जो जेको मूड हुई पंहिंजो झगड़े जो जेको वीचार हुई निकिरी वञे एटले झगड़ो थी वञे त भाई खे त लाट घणी ॻाल्हि भाई त वरी पाछी साधू महात्मा वटि बाटली पूरी थी रही एटले की महात्मा हाणे त हीअ बाटली पूरी थी रही आहे अने अॼु उपाय त लाट कमु लॻो हाणे मूंखे ॿी दवा ॾियो तॾहिं साधू महात्मा खे चए की भाई हिन बाटली में त कीअं न हो खाली पाणी हो पर जेको सची ॻाल्हि आहे ई मुनिया मिठी माठ त माठ खणे वठी वञे तेसि तव्हांजो झगड़ो न आहे थियो अने तव्हांजो घणी चोपा चोप खाई ॻणे अने खाई ॻणो माण्हू चवे त पेट भरिजी वञे त झगड़ा मिस हुजे त बसि हाणे ॿियो की उपाय जी ज़रूरु आहे भाई तूं माठ करी वेठी हुजे अने त्या कहिड़ो पई आहे त

पलक तेरी कोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोर नहीं एक चोर के अभी चली है चोरी।

0: देखा था जी मगर मुझे याद नहीं है।
1: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, मैंने भी देखा एक सपना।
0: हाँ क्या देखा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना।

0: Dojin Hidai, Dojin Sukai. आज जून 1936 थी आपनी सेवामां रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाजना सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आज समग्र भारत में लगभग 591 स्टेशनों संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत में 92% भौगोलिक विस्तार में 99% जेटली वस्ती ने आवरी ले छे। देशना ग्रामीण शहरी अने सरहदी विस्तारों में 23 भाषाओ अने 182 जेटली बोलियों द्वारा राष्ट्रीय अने प्रादेशिक कार्यक्रमों पहुंचाड़ी रही छे। आधुनिक समय ने मान आपीने डीटीएच मोबाइल एप्स अने विविध प्लेटफॉर्म पर 24 कलाक आपनी सेवा में हाजर रहती भारतीय वारसो अने संस्कृति नु जतन करती आकाशवाणी ने आज 90 वर्षे लाख लाख अभिनंदन।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती

0: OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम में हवि समय शो किशोर कुमार गायलू बॉम्बे टू गोवा फिल्म गई।

0: सिधै अर्जीको अपिल गरी न्याय मार्दै सकौ छौ। फोन नम्बर 0792328549। शुरू तब जानू छो कि पीएम पोषण योजना अन्तर्गत प्राथमिक शाला 6-14 वर्षीय बालकों माता आहार बाबते सम्बन्धित जिल्ला निवासी अधिक कलेक्टर श्री ने तबज आंगनबाड़ी केन्द्र माथि 6 महीना 6 वर्ष सुधीमा बालकों ने सगर्भा महिलाओं ने तथा धरत्र माताओं ने माता आहार बाबते कोई फरियाद हो तो सम्बन्धित जिल्ला पंचायत में फरियाद निवारण अधिकारी श्री ने अर्जी की फरियाद कर सकते और जो अधिकारियों ने निर्णय की संतोष न पाए तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील कर न्याय मिल सको। फोन नंबर 0792328549।
1: શબ્દો છે સુદર્શન ફકીરના, કલાકારો રાજેન્દ્ર મહેતા અને નીના મહેતા।

0: संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe economic corridor,

हमें जब समी रहा था सुगम संगीत नो कार्यक्रम आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट भूज बराबर 1:20 आप सांभ गुजराती में समाचार।

0: बिहार राजकोट रिपोर्ट। प्रस्तुत है फौजी दस्तों के लिए कार्यक्रम जय भारती।
1: जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और समीर सेन की आवाजों में छोटी बहन फिल्म का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आइए अब सुनते हैं प्रेम धवन के लिखा, हंसराज भाई का संगीतबद्ध किया मिस गुड नाइट फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

टीम का नाम है टांगे वाली। आवाज है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। बोल प्रेम धवन के। संगीत सलील चौधरी का।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत। गीतकार कमर जलालाबादी, संगीतकार ओपी नैयर।

टीम का नाम है खेल खेल में, आवाज है आशा भोंसले और आर डी बर्मन की, बोल गुलशन बावरा के, संगीत आर डी बर्मन का।

0: जय भाई के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: अब हुआ अब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो क्या हुआ।
1: आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया फटी पतंग फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में।

फिल्म का नाम है आराधना, आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत एस डी बर्मन का।

दोस्तों कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

फौजी दिवसों के लिए कार्यक्रम। प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भूज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित

0: है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XATI

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के दो जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20

49 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समाप्त

0: नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती है तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
0: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता

अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है।

0: society to the pinnacle of progress, officers will often have to move forward by striving against the tide. She said this after a group of IAS officers in the 2024 batch called on her at Rashtrapati Bhavan today. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart An Kyung-wook in Seoul. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile V-3, marking a significant achievement for the country's defense sector. The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes of the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The trials successfully demonstrated the missile's precision strike capability, reliability and effectiveness in varied combat scenarios. The Supreme Court had dismissed a petition challenging the center's decision to undertake caste enumeration as part of the upcoming census, saying the issue falls within the policy domain of the government. The top court observed that the government needs to know the number of people belonging to backward classes to frame welfare measures for them. In IPL cricket, host Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur, keeping their playoff hopes alive. And that is the end of this news bulletin.
1: द्विपक्षीय संबंधों ने नया शिखरे पहुंचाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटाली में पीएम मेलोनी वच्चे बातचीत। सीएम और संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में दक्षिण कोरिया साथ संरक्षण सहित अन्य क्षेत्रों में समझौते में करार पर हस्ताक्षर कराया। बांग्लादेश में चट्टोग्राम में भारत में सहायक उच्च आयोग में सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी मृत हालत में मर्या। वर्तमान वैश्विक स्थिति वच्चे आज बेजिंग में पुतिन और जिनपिंग वच्चे बैठक की जाई। रशिया ना राष्ट्रप्रमुख व्लादिमीर पुतिन आ वर्षे नवी दिल्ली में भारत में अध्यक्षता में योजनारी ब्रिक्स समिट में हाजरी आपशे। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग वाणचोरी मॉडल नो पर्दाफाश कर्यो। भारतीय हवामान विभाग ने आज दिल्ली पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में तीव्र गर्मी मौजा की स्थिति माटे ऑरेंज अलर्ट जारी कर्यो। चीन में अनेक भागों में भारी वरसाद और पूर थी विनाश सर्जायो, जेमा अत्यार सुधी

वादे पागल अने कुमार शानूना स्वरमा आहतो हम आपके दिल में रहते हैं फिल्मनू गीत। श्रोता मित्रों, गुलमोहर कार्यक्रम में हवे सांभळीए कुमार शानू अने अलका याज्ञिकना स्वरमा अलबेला फिल्मनू गीत।

हाजिर हो तो संबंधित जिला पंचायत में फरियाद निवारण अधिकारी श्री ने अर्जी की फरियाद परिषदों से अरे जो अधिकारियों ने निर्णय के संतोष में था तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी के अपील करे न्याय निर्देशकों को फोन नंबर 07 9 232 58 409।

मैंने फरियाद परेशान से हमें जो मेरे राशन मोबाइल ऐप द्वारा राशन कार्ड में लगती डेबिट मिली थी तो मुझ बड़े बड़ा अनाज में जितनी रसीद मिली शिकायत है तथा फरियाद में भी शिकायत है। अरे जो अधिकारियों ने निर्णय की संतोष न था तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील करी न्यायमूर्ति शिकायत छो फोन नंबर 0709-232-5849। शुरू करने जाने छो की पीएम पोषण योजना अंतर्गत प्राथमिक शाला में छोड़ती 14 वर्ष के बालकों ने मिलता आधार बाबत संबंधित जिला में निवासी अधिक कलेक्टर सिंह ने

स्वतंत्र प्रासाथीर आज लोक संगीत में कार्यक्रम समाप्त था। आज कलाकार था मनोज कुमार नाय अने भानुभाई तुरी। 354.46 मीटर्स एटले के 846 किलोहर्ट्ज पर आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र नु प्रसारण। સાંજના 6:15 થવા જઈ રહી છે, થોડી જ વારમાં સાંભળીશું સિંધીમાં સમાચાર।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं माला खुबचंदाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ अॼु रोम में इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीअ सां वफ़द सतई मज़ाकरात कई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ ऐं जॉर्जिया मेलोनीअ हिकु वंडियल लेख में भारत इटली अहमियत भरियल रणनीतिक भाङे भाईवारी ऐं आर्थिक अवाली क़दमनि जो ज़िक्र कयो। डीआरडीओ बग़ैर इंसान जे ड्रोन मिसाइल ULPGMV-3 जो कामयाबी सां आज़माइशी तजुर्बो कयो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अॼु सियोल में ॾखण कोरिया जे रक्षा मंत्रीअ सां मुलाक़ात कई। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित आदमशुमारी ॻणप करण वारे मर्कज़ जे फ़ैसिले खे ललकारींदड़ अर्ज़ी ख़ारिज कई। उत्तर ऐं विच भारत में लूअ जो कहर जारी। IPL क्रिकेट में अॼु शाम जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुक़ाबलो मुंबई इंडियंस सां। हाणे ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ अॼु रोम में इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीअ सां वफ़द सतई मज़ाकरात कई। इन ॻाल्हि ॿोल जो मक़सदु मुख्य खितनि में ॿिन्ही मुल्कनि जे रिश्तनि नातनि खे वधीक मज़बूत करणु आहे। बैठक में तिजारती वापार, सीड़प, तकनीक, रक्षा, साफ़ सुथरी शक्ति, रणनीतिक हिसेदारीनि में सहकार वधाइण ते ख़ासि ज़ोर ॾिनो वियो। ॿिन्ही रहनुमाउनि आपसी मुफ़ाद सां जुड़ियल इलाक़ाई ऐं आलमी सूरतहाल ते पिण बहस मुबाहिसो कयो। इहा ॻाल्हि ॿोल भारत ऐं इटलीअ जे विच में वधंदड़ रणनीतिक भाङे भाईवारीअ खे ज़ाहिर करे थी, जंहिं में आर्थिक सहकार ऐं माण्हुनि जे विच में लाॻापन खे वधाइण ते ख़ासि बल ॾिनो वियो। वफ़द सतह जी ॻाल्हि ॿोल खां पोइ ॿिन्ही अॻवाननि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गॾियल बयान जारी कयो। श्री मोदीअ पधिराई कई त भारत ऐं इटली पंहिंजनि ॿिटती लाॻापन खे ख़ासि रणनीतिक भाङे भाईवारीअ जी सतह ताईं पहुचाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे।
1: भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदीअ भारत ऐं यूरोप जे विच में रिश्ते नातनि खे वधीक मज़बूत बणाइण में इटलीअ जे सहकार जी साराह कई। हुन उभरंदड़ तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग तोड़े लगातार विकास जे खेत्रनि में आपसी सहकार जी अहमियत ते रोशनी विधी। ॿिन्ही अॻवाननि आलमी ललकारुनि ऐं सलामतीअ सां जुड़ियल मुद्दनि ते सहकार वधाइण सां गॾोगॾु पंहिंजे सिफारती ऐं आर्थिक लाॻापन खे वधीक मज़बूत करण वारी पंहिंजी वचनबद्धता दोहराई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: हिन जे सालनि में भारत इटली रिश्ते नातनि में बेमिसाल तरक़ी थी आहे ऐं हाणे इहे लाॻापा फ़ैसिले जोॻे मोड़ ते पहुची चुका आहिनि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐं इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनीअ गॾियल लेख में चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में लाॻापा हिकु खु़शगवार दोस्तीअ खां वधी करे हिकु ख़ासि रणनीतिक भाङे भाईवारीअ में पहुची चुका आहिनि। ॿिन्ही अॻवाननि चयो त अहिड़े वक़्त में जॾहिं आलमी व्यवस्था में तमामु घणा बदिलाउ थी रहिया आहिनि, तॾहिं भारत इटली भाङे भाईवारी आला तरीन सियासी ऐं इदाराई सतहुनि ते बाक़ाइदे तबादलनि जी रहनुमाई करे थी। ॿिन्ही नेताउनि चयो त भारत ऐं यूरोपियन संघ जे विच में तजवीज़ कयल मुक्त वापार समझौतो ॿिन्ही मुल्कनि में वापार ऐं सीड़पकारीअ जे वहकिरे खे वधाइण जे लाइ रस्तो हमवार कंदो। हिफ़ाज़ती मंत्री राजनाथ सिंह अॼु सियोल में ॾखण कोरिया जे हिफ़ाज़ती मंत्री ली योंग चुल सां मुलाक़ात कई। श्री राजनाथ सिंह चयो त बैठक जे दौरान ॿई पख गॾियल विकास, गॾियल पैदावार ऐं गॾियल रवानगीअ जा वज पैदा करण जे लाइ आपसी कोशिशुनि जो फेज़ वठण ते रज़ामंद थिया। हुन चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जे नवाचार इकोसिस्टम खे पाण में ॻंढण वारी वॾ ख़्याली काइंड एक्स पहल जी सग खे मुकमल नमूने इस्तेमाल करण जे वास्ते हिकु रोड मैप ते पिण गुफ़्तगु कई वई। ही ख़बरूं तव्हीं आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हीं असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते पिण ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जी तफ़सीलात लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। मुल्क आत्मनिर्भर भारत पहल जे तहत स्वदेशी रक्षा सघन खे मजबूत करण तरफ हिकु वधीक अहम हासिलात हासिल कई आहे। रक्षा खोजना ऐं विकास संगठन DRDO अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGMV3 जी आख़िरी विकास आज़माइश खे कामयाबी सां मुकमल कयो आहे। इहा मुल्क जे रक्षा खिते जे लाइ हिकु अहमियत भरी हासिलात आहे।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर

मंत्री राजनाथ सिंह ULPGM-V3 मिसाइल की कामयाब विकास आजमाइशन के लिए DRDO जार खिते के इधारण रक्षा से गडोग उत्पादन भांगे भाईवार उद्योग जगत की सारा कई श्री सिंह इन रक्षा खिते में आत्मनिर्भरता दां एक रणनीतिक हासला सदायो। सुप्रीम कोर्ट आदमशुमारी गणप 2027 के तहत जात ते आधारित आदमशुमारी गणप कराने के सरकार के फैसले के ललकारींदड़ अर्जी के अज खारिज कयो आहे। अदालत चयो आहे त इहो मुद्दो सरकार के नीतिगत हक खिते में इंदो आहे। मुख्य जज सूर्यकांत जी सिद्धार्थ वारी बेंच चयो त पुठिते पियल तबकन वास्ते कल्याणकारी उपाव तैयार करण के लिए सरकार के संदस तहदाद जानण जरूरी आहे। सुप्रीम कोर्ट अज मर्कज तोड़े सभी राज्यों में मर्कज जैसा रियासतों का एक PIL दरखास्त से जवाब तलब किया है। इनमें सरकारी कानूनी पैनलों ए कानूनी अमलदारों की मुकररीन में महिला वकीलों के लिए 30% महफूजगी की घुर कई वही है। मुख्य जज सूर्यकांत की सरबराई वाली बेंच एक ट्रस्ट की अर्जी से नोटिस जारी कर। IPL क्रिकेट में अज कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुकाबलो मुंबई इंडियंस सा मैच कोलकाता में शाम जो 7:30 बजे का शुरू थी। अज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स 118 पॉइंट वधी करी 75,318 ते बंद थियो। निफ्टी 41 पॉइंट की वाध दर्ज कंदे 23,659 ते पहुंतो। आबोहा मैच में इन हफ्ते उत्तर ओलह ए विच भारत में लू जा इम्कान जाहिर कया इंदर चैन डीन ताई दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ओडिशा छत्तीसगढ़ राजस्थान तेलंगाना ए उत्तराखंड में

गर्म हवाओं लगण जा इम्कान आहिन जॾहिं कि असम मेघालय केरल माहे ओलह बंगाल जे तराई वारनि इलाकनि सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल तोड़े अंडमान ऐं निकोबार उपबेट मेड़ में सुभाणे ताईं तेज बरसात थी सघे थी। उन्हें राजस्थान जा घणाई जिला इन वक्त सख्त लू की चपेट में आहिन। आबहवा महत ने अज राज्य के बिन जिलों में लू की सूरत हाल के ध्यान में रखन्दे ऑरेंज अलर्ट जॾहिं कि 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात में कच्छ के सरहदी जिले के राजस्थान ए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गंढण वाली एक नई रेल सेवा जल्द ही शुरू थियण वाली है। ओला रेलवे एक नई रेल सेवा शुरू करण जो तैयारी मुकम्मल कई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव इन जुमे दहाड़े ते रेल गाड़ी के साई झंडी दिखारे रवानो कंदो। आखिर में मुख्य खबरों एक बार बेहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनिया से वफद चतई मजाकरात कई। प्रधानमंत्री मोदी ए जॉर्जिया मेलोनिया एक वंडल लेख में भारत इटली अहमियत भरल रणनीतिक भाईवारी ए आर्थिक अवाली कदम जो जिक्र किया। डीआरडीओ बगैर इंसान के ड्रोन मिसाइल ULPGMV3 जो कामयाबी से आजमाइशी तजुर्बो किया। IPL क्रिकेट में अज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स जो मुकाबलो मुंबई इंडियंस से। इतने खबरों पूरी थी। नमस्ते।

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा, आप सुन रहा है युवा मित्रों के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जहां बात होती है सपनों की, आत्मविश्वास की और उस नई सोच की जो जिंदगी को बेहतर बना सकती है। मैं हूं आपकी दोस्त रुत्वी पवार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन जिसकी ताकत जिंदगी बदल सकती है। छोटे बदलाव बड़े परिणाम। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए या फिर कोई जादू आना चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह तो धीरे धीरे बदलती है। हर दिन की छोटी आदतें, छोटे फैसले, छोटी सोच मिलकर एक दिन बहुत बड़ा परिणाम देती है। एक छोटा बीज ही आगे चलकर विशाल पेड़ बनता है ना। एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है और एक छोटा सा सकारात्मक कदम किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, हमारे पास सपने बहुत है, ऊर्जा बहुत है, लेकिन कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर तुरंत सफलता नहीं मिली तो शायद हम सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन प्रकृति हमें क्या सिखाती है? सूरज भी धीरे धीरे उगता है, नदी भी तो बूंद बूंद से बनती है ना। और इसी तरह इंसान भी छोटे छोटे प्रयास उससे महान बनता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कैसे सुबह का पहला एक घंटा हमारे पूरे दिन का मूड तय कर देता है? अगर सुबह उठते ही हम मोबाइल खोल दे तो मन भटक जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाले, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा ध्यान, थोड़ी प्रार्थना या बस खुली हवा में गहरी सांसें ले तो पूरा दिन हल्का और सकारात्मक लगता है। यही तो है छोटा बदलाव। हर सफल इंसान की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें जरूर होती है। कोई रोज पढ़ता है, कोई रोज सीखता है, कोई रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वही छोटी आदतें उनकी पहचान बन जाती है। हम आगे बढ़े इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक ऐसा सदाबहार गीत जो हमें सिखाता है कि जो भी होगा वो होकर ही रहेगा।

आप सुन रहे थे पुकार फिल्म से के सरा सरा, जिसके गायक कलाकार है शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति। दोस्तों, हमारी जिंदगी पर हमारे शब्दों का बहुत असर होता है। अगर हम हर बात पर बोले मुझसे नहीं होगा यार, तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन अगर उसी तरह हम सिर्फ इतना कह दे मैं कोशिश करूँगा, तो अंदर नई ऊर्जा सी आ जाती है। तो छोटा बदलाव क्या हो सकता है? याद रखिए, हम जैसे खुद से बात करते हैं वैसे ही हमारा मन बनता जाता है। इसीलिए खुद को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, खुद के दोस्त बनिए। दोस्तों, आपको पता है कि अगर जीवन में सबसे कीमती चीज कुछ है तो वो क्या है? वो है समय। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे समय का सही उपयोग बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट कोई नई चीज निरंतर सीखते हैं, एक साल बाद आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा लिखना, थोड़ा सीखना, वही छोटी आदतें आगे चलकर आत्मविश्वास बढ़ाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच यह है कि शुरू करने से ही सही समय बनता है। कुछ उसी तरह बात करते हैं रिश्तों की। वह जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और रिश्ते बड़े बड़े उपहारों से नहीं, छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। घर पहुँच कर माता पिता से मुस्कुराकर बात करना, दोस्तों की बातें ध्यान से सुनना, सही हो तो किसी की तारीफ करना, मदद मिलने पर धन्यवाद अवश्य कहना, यही छोटी बातें दिल में जगह बना लेती है। आज की तेज जिंदगी में लोग शीघ्र ही अपनापन चाहते हैं, इसीलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि जिंदगी की असली खुशी अपने लोगों से ही मिलती है। सफलता के राह में हम अक्सर बड़ी बड़ी जीत ढूंढते हैं, लेकिन असल में जीत उन्हीं छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। तो चलिए सुनते हैं परिणीता राज की बात डिग्री वर्सेस स्किल के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं परिणीता राजपूत आज आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये वो विषय है जिसकी बदौलत हम समाज में जाने जाते हैं, अपना नाम और पहचान बनाते हैं और समाज में सिर उठाकर जी पाते हैं। कई लोगों को हमारे आज के विषय के बारे में अंदाजा आ गया होगा, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी भी हमारे आज के विषय को लेकर सोच में डूबे हुए होंगे। चलिए अब सभी की विचारधारा को विराम देते हुए हम हमारे आज के विषय पर से पर्दा उठाते हैं। हमारा आज का विषय है डिग्री या स्किल, यानी कौशल। आज के समय में कई ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या अच्छी नौकरी पाने के लिए केवल एक डिग्री काफी है? क्या कौशल के दम पे एक व्यक्ति नौकरी के काबिल किया जा सकता है? डिग्री ज्यादा जरूरी है या कौशल? वास्तविकता में न डिग्री ज्यादा जरूरी है न ही कौशल। दोनों गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे और न ही एक दूसरे के बिना उपयोगी। कुछ लोग ये मानते होंगे कि डिग्री का महत्व ज्यादा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके नजरिए से कौशल का महत्व ज्यादा है। पर असलियत में देखा जाए तो डिग्री आपको एक एंट्री टिकट देती है या नौकरी के इंटरव्यू तक पहुंचने का एक जरिया देती है। वही आपका कौशल ये तय करता है कि आप उस नौकरी को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। डिग्री दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करती है, वही कौशल अल्पकालिक संतुष्टि देती है। अगर आपके पास किसी भी क्षेत्र में एक डिग्री है तो आप उस क्षेत्र में काम करने के लिए योग्य कहला सकते हैं, पर बिना डिग्री का कौशल जैसे अंधों में काना राजा। इस बदलते समय में जहाँ चीजें और टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, केवल डिग्री ही स्थिरता प्रदान करती है। आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे? तो सुनिए, 2026 AI का जमाना है, बाजार में नए ट्रेंड्स के अनुसार चलना होगा। वही अगर किसी व्यक्ति ने AI प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया होगा या डिग्री हासिल की होगी तो वह उससे लंबे समय तक उत्पादन प्रदान करेगा। डिग्री से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही कौशल से हमें उस ज्ञान का उपयोग कब और कहाँ करना है ये पता चलता है। डिग्री एक बार मिल जाती है, लेकिन स्किल्स को लगातार अपग्रेड यानी अपस्किल करना पड़ता है। जब इंसान के पास स्किल होती है तो वो कामयाब कहलाता है, लेकिन जब इंसान के पास डिग्री या उससे आने वाला ज्ञान हो तो वो महान कहलाता है। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, ये सब अपने कौशल के बल से कामयाब कहलाए, परंतु कई सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर जैसे CV रमन, APJ अब्दुल कलाम अपने ज्ञान के द्वारा महान कहलाए। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय है जिसमें केवल कौशल के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है, वहीं कई ऐसे भी व्यवसाय हैं जिसमें डिग्री अनिवार्य है।
कई अभिनेता हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन वह अपने जीवन में कामयाब है अपने कौशल के सहारे। लेकिन वहीं जब हम एक कंपनी में एचआर की नियुक्ति के लिए जाएं, तो वहाँ हमारे कौशल से पहले हमसे हमारी डिग्री पूछी जाएगी। हमारे देश में डिग्री की बहुत वैल्यू है। डिग्री की सच्चाई ये है कि आपको चांस पहले मिलता है। एक उदाहरण से समझे तो मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपके सामने दो टीचर है। एक के पास बीकॉम की साधारण सी डिग्री है, वहीं दूसरी तरफ एक सीए पास है, तो आप किससे पढ़ना पसंद करोगे? आपका सीधा सीधा जवाब होगा सीए पास टीचर से ही पढ़ेंगे। तो इसमें आपने पहला चांस किसको दिया? जिसके पास अच्छी डिग्री थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीए किए हुए लोगों से भी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन उन्हें पहला चांस नहीं मिला। 1990 में एक डिग्री काफी थी किसी भी इंसान को काम दिलाने के लिए, लेकिन अब 2026 है। आज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी स्किल्स या हुनर। डिग्री जरूरी है पर आज की हकीकत ये है कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है एक अच्छे भविष्य के लिए। डिग्री सिर्फ एक रास्ता खोलती है जबकि स्किल्स उस रास्ते को हमेशा खोले रखने में और जारी रखने में मदद करती है। ज्ञानी इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता तो सबसे ज्यादा परेशान वही इंसान होता है। उसे

0: सिर्फ व्यावसायिक बल्कि मानसिक और सामाजिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कार है लेकिन फ्यूल नहीं, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? वहीं दूसरी तरफ आपके पास फ्यूल तो है लेकिन कार नहीं, तो फिर से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। यहाँ कार और फ्यूल का मतलब डिग्री और स्किल से है। सिर्फ डिग्री के साथ ग्रोथ धीमी हो सकती है और सिर्फ स्किल के साथ पहचान बनाने में वक्त लग सकता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो करियर को एक नई गति मिलती है, क्योंकि आप योग्य भी हैं और सक्षम भी। आज की इस भागदौड़ भरी और कठिन प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में हम अक्सर दूसरों को देखकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं। हम ये देखते हैं कि शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया या कोई पड़ोसी डॉक्टर है और बिना सोचे समझे उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर के ये सोचा है कि आप वास्तविकता में कौन है? सबसे बड़ी चुनौती दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। हमें अक्सर दूसरों के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, ये भूलकर कि हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक टैलेंट छिपा होता है। कोई जन्मजात कलाकार होता है तो कोई तकनीक में माहिर। जब तक आप अपनी उस छिपी हुई खूबी को नहीं पहचानोगे तब तक आप केवल एक औसत जीवन ही जी पाएंगे। अपनी रुचियों को खोजना अब केवल एक शौक नहीं बल्कि आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। यदि आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो शांत बैठकर स्वयं से एक प्रश्न पूछें। मेरी असली क्षमता क्या है? मैं वास्तव में क्या सीखना चाहता हूँ? मैं दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूँ? जब एक युवा अपनी क्षमता को जान लेता है तो वह केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करता बल्कि वह सकारात्मक बदलाव का नेतृत्व करने लगता है। याद रखिए, दुनिया को आपकी कॉपी की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपके ओरिजिनल अवतार की जरूरत है। डिग्री और स्किल में से किसी एक को चुनना गलत है। अगर आपके पास डिग्री है तो उसे अपनी स्किल के साथ मजबूत बनाएं। डिग्री नहीं भी है तो होना सीख कर आप दुनिया जीत सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि डिग्री की चमक के साथ साथ कौशल की दमक भी लाएं। किताबी कीड़े ना बने बल्कि सीखने वाला बने। धन्यवाद।
1: अब परिणीता की यही बात हमें सिखाती है कि स्किल्स पर काम करना एक छोटा बदलाव है जो आगे चलकर बड़े नतीजे लाता है। दोस्तों, आज के यह मॉडर्न जिंदगी में सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वह तो एक सीखने का माध्यम भी है और प्रेरणा का भी, लेकिन यह भी एक छोटा बदलाव जरूरी है। हर समय तुलना करने की बजाय खुद की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। सही है ना दोस्तों? हर किसी की यात्रा अलग होती है, कोई जल्दी आगे बढ़ता है कोई धीरे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम रुके नहीं। याद रखिए, धीमे गति भी प्रगति ही है। वैसे ही दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़े सपने पूरे करने हो तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, वह मन का भी होता है। हम सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। रोज थोड़ा चलना, पानी थोड़ा ज्यादा पीना, अच्छी नींद लेना, थोड़ा हंसना, यह छोटा बदलाव शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाते हैं और एक स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों की ताकत झेल सकता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। कई बार चीजें हमारे योजना के अनुसार नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता खत्म हो गया है। कभी कभी जिंदगी हमें एक नया रास्ता दिखा रही होती है। एक छोटा बदलाव यहाँ पर भी जरूरी है। हर अनुभव को सीख की तरह देखना चाहिए। जब सोच बदलती है ना, तो परिणाम भी बदलने लगता है। जिंदगी भी तो एक सफर ही है, हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती हुई। तो चलिए, इसी एहसास के साथ सुनते हैं तमाशा फिल्म से सफरनामा, जिसके गायक कलाकार है लकी अली।

हमारे जैसे युवाओं का देश है और युवाओं की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? नई सोच, नई ऊर्जा और बदलाव लाने का साहस। अगर हम रोज एक छोटा सकारात्मक बदलाव करें तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। कल्पना कीजिए, अगर हम रोज एक पेड़ लगाए, एक व्यक्ति की मदद करें, एक नई चीज सीखे या एक सकारात्मक बात फैलाए तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले क्या ही बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटे कदम से ही हुई थी। एक छोटा दीपक भी अंधेरे को चुनौती दे सकता है, इसीलिए खुद पर विश्वास कीजिए, आपके छोटे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज की मेहनत कल की पहचान बन सकती है। सपना देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोज उनके लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। एक पन्ना रोज पढ़ना, समझना एक कदम रोज आगे बढ़ना, हर एक गलती को सुधारते रहना, वही सफलता का रास्ता है। दोस्तों, किसी भी मंजिल तक पहुंचने का राज यही है कि चलते रहो, भले धीरे चलो लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। कभी कभी जिंदगी में बस चलते जाना ही जवाब होता है, बिना जल्दी बिना शोर। तो आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म कारवा का एक खूबसूरत सा गीत कदम, जिसे गाया है प्रतीक कुहड़ ने।

आज की इस बातचीत से बस एक ही बात याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। एक अच्छी आदत, एक अच्छा विचार, एक अच्छी मुस्कान, एक अच्छा निर्णय, ये सब मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाओगे, क्योंकि छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। इसी उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नया विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे थे युवा मित्रों के लिए विशेष कार्यक्रम युवावाणी। ये प्रसारण आप आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा से सुन रहे थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे

0: कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी

श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चू से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी क्वाड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़

दूर जा सकते हैं। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल

0: जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रस्तुत मुख्य समाचार।

विचार व्यवस्था में आता है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज गांधीनगर खाते राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा छेल्ला एक सप्ताह में तक समय लेवाया पगड़ा तहत राज्य में पेट्रोल डीजल की स्थिति की समीक्षा करी। कच्छ में भूज, गांधीधाम, मांडवी, अंजार, मुंदा, भचाऊ, नखत्रा, रापर, कोठा, रत्न, पाणंद, आईटी, हाउस प्रक्रिया शुरू थी।

0: डिग्री सेंटीग्रेड, सुरेंद्रनगर में रिकॉर्ड हुआ 43 डिग्री सेंटीग्रेड, सूरत में रिकॉर्ड हुआ 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड।
1: कच्छ म्यूजियम खाते त्रिदिवसीय कला संस्कृति और वारसा उत्सव कला विधि 2026 योजा गयो। त्रण दिवस चालेला आ महोत्सव कला प्रेमी और विद्यार्थियों ने कच्छना वारसा थी परिचित कराया था। आंतरराष्ट्रीय म्यूजियम दिवस अंतर्गत विशेष सत्र योजायो, साथ ही जिले प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप और डेमोन्स्ट्रेशन मुलाकातों तथा विद्यार्थियों के आकर्षण का केन्द्र बनाया था। त्रण दिवस सुधी भाग लेना तमाम सहभागियों ने विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र और एनायत कर अंत में मुख्य समाचार फरी एक बार। राज्य सरकार एक राष्ट्र एक चूंटी अंगे विधेयक ने समर्थन आप। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल राज्य में वाणिज्यिक पीएनजी गैस की उपलब्धता तथा नवा जोड़ा की स्थिति की समीक्षा की। हवेथी वतन प्रेम योजना अंतर्गत 20 प्रकार जनहित विकासलक्षी कामों हाथ धरी शकाशे। हवे सिरामिक उद्योगों ने पाइपलाइन गैस जोड़ आपने आगामी 7 दिवस राज्य गर्मी की आंशिक राहत मिलवानी शक्यता। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र में प्रादेशिक समाचार पूरा थया। हवे पछी आप रात्रे 7 वगे 50 मिनिटे राष्ट्रीय समाचार सांभळी शकशो। नमस्कार।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, विंध्याचल के अंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषा में

गया। बनी भोसला जी कक्षा संबंध हरित टीम ने संपूर्ण क्षमता प्राप्त करना सक्षम। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में गुजरात सरकार ने संपूर्ण समर्थन। डीआरडीओ मानव रहित हवाई वाहन मिसाइल यूएलपीजीएम वी3 नु अंतिम विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर। वैश्विक अनिश्चितता वच्चे पण भारतीय उद्योगो 6.4 टका रहेवानुं संयुक्त राष्ट्रनुं अनुमान। आईपीएल क्रिकेटमां कोलकाता नाइट राइडर्स अने मुंबई इंडियन्स वच्चे मुकाबलो। આ સાથે આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા। હવે પછી આવતીકાલે સવારે 7:10 પ્રાદેશિક સમાચાર સાંભળી શકશો। નમસ્કાર।

0: काम करने में जो बत्तक को बनाने में देर हो जाती है तो वह तुम जो है आखिर छोटे बनाने लगा तुम।
1: जब तुम नाराज होते हो तो कितने अच्छे लगते हो।
0: और तुम इसलिए मुझे जान बूझ कर चिढ़ाती हो।
1: चिढ़ाने में मजा आता है ना।
0: तुम्हारा लगा अगर मैं भी तुम्हें

0: ठीक है, इस वक्त पर बच्चा चल गया। तो एक बात कहूँ शीला,
1: आपकी बात कभी बुरा नहीं है, जवाब मानूंगी।
0: टिंकू पर जरा कंट्रोल रखो।
1: क्या हुआ, क्या स्कूल को कोई शिकायत आई है?
0: नहीं, लेकिन अगर मैं वर्मा जी के बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा तो स्कूल से भी शिकायत आने लगेगी। धीरे धीरे बंदी बंदी जानना पड़ती है। अगर आपने टिंकू ने भी सीख ली तो
1: क्या करो, आप ही बताइए। कई बार टिंकू को मना कर चुकी हूँ, अब स्कूल से आकर घर में बंद होकर तो बैठा नहीं रह सकता है,
0: कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम इसे जरूर से करो, तुमके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
1: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो जानते हैं। कई बार इशारा कर चुकी हूँ, वो कभी वर्मा जी को दोष देते हैं और कभी अपने महाराज को कोसते हैं। बाबा रे बाबा, उनके साथ जब उनके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि पेट को न करने लगे। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार धीरे टिंकू के पंचे लगा चुरा कर ले गया था।
0: तुम साफ क्यों बता देती हो कि बच्चों को लगाया करो?
1: कहना ही पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ कोई और मकान देखो, कम से कम पड़ोस तो अच्छा मिले।
0: मकान छोड़कर भागना समस्या का हल नहीं है शीला। अच्छा हो हम अपने पड़ोसी वर्मा के परिवार को भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।

अभी आपने सुना शोभा रस्तोगी का लिखा कैसन खरीदा हुआ बुक। निर्देशिका थी दुर्गा मेहरोत्रा। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी।

गाते थे। कार्यक्रम की पहली पेशकश जूलियल बीटू फिल्म से आवाजें सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफा और कादर मुस्तफा के, संगीत विशाल खुराना का, बोल जुनैद वासी की।

0: बेचकर 30 मिनट तक लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ता काशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: सचिन विलियम जेम्स अब समय फिल्म में ए आर अमीन और अंजलि गायकवाड़ को इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है ए आर रहमान ने।

प्रज्ञा फिर स्वागत है। आप सुनते हैं शान और अनुष्का मनचंदा को प्रेम गोलमाल में। कुमार का इस गीत को लिखा है कुमार ने

som hun har sagt med lavlendingen. द्वारा तो रेटली ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों रक्षा कृषि सहित प्रमुख क्षेत्र में

0: mucha nostalgia. Madre por aquí en el arco se dobla con ello a la gran aplauso de que se nos repara. O al bandar de que se tome ese yoko o al para ni que ya pondrá un rato con San Jote que en San Jote por hoy un hombre realmente mudo y que le quiere realmente Giorgio en el único que ve Petra de Mendel Star que va a decir que va a estar su que ve. Bueno, de hecho, me parece no sé que aquí a mi llanico a San Barano que ya ve San Jote que ya एक अन्य समझौता लोकल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष राजनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत

0: समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र

0: दिन ऑफ मॉडर्नाइजेशन लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाज में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत का रिटेल एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोलियन मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस लड़े को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में

प्रधानमंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नवन्ने में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के

प्रस्तुत किया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूह के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर

0: सिंह के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अर्थशास्त्री इंदो पटेल ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यक्रम में भी गर्म और उमस भरे मौसम का

इसी बीच विभाग ने तेलंगाना में निकोबार द्वीप समूह, केरल, माले, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलेहर, देविका सिहार और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फिल्म राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को

0: रोड्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: मिस्टर मोदी stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर

0: ecosystem. So let's first listen to what he said.
1: If I wish for my design or position to be done, भारत की पहचान स्किल टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस के इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे. फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे.
0: We just heard the Prime Minister saying that, you know, talking about

0: मेरे में जो सिंगर नहीं है उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज
1: संगीतकार
0: हया पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सुदर्शन भाई के साथ एक आवाज है अब्दुल मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना तो आवाज तो यही है जो कही कमाल साहब को बेमिसाल गाजा है, आई जंजीर की झलका खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का ऐसी अद्भुत जागरण

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराये, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़ थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसे गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहाँ के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 वर्ष के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहाँ उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडलन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री

भारत लौटने के बाद गिरीश की यार्ड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में आते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूँ, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानों की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971 गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हरिभवन का निर्माण और दूसरी ओर SL भारती के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हरिभवन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जाने माने निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

मन है, क्या न बजे मृदंग मन में और क्या न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश करनाल के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब बलियो मीरदे मगने ओंगनंदु कलबल्ली चेलुबी कालू कोल्लूरु हेगदित्ती, ये है कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश करनाल ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है, जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने बराए, शमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चॉक इन्वेस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम जो तेलुगु में शंकरा भयम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता।

0: फिल्मों के साथ साथ मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय करने वाले गिरीश कर्नाड एक मराठी फिल्म में भी मुख्य सहायक अभिनेता थे। वो मराठी फिल्म थी उम्बरठा।
1: तुम्हारे अस्वस्थ या घर तुझे जब तक काम नहीं हो तो बुद्धि

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हे सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाल ने।
1: मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किसमें?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, बोलिए।
1: आजम के वहाँ क्या चले जाओ?
2: ये आजम है कहाँ? इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मैं इस पर रखी हुई चीजों को ले लेना।

लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नाटमंडल अग्निवट वाले और तालेबंद इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन

फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंगलेंदु कलगल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का इन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक ओंगल पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की सेवा के।

0: के फिल्मकार कार्यक्रम आज केंद्रित था। लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड का।
1: आज की फिल्मकार

नहीं, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ है जैसे ही लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ ही हैं, एक दूसरे में खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि

मैंने उस दिन पहली बार अपने थिएटर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना भूले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न विवान गई, न झूठे रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती

अगर कोई थोड़े से भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को पार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें ने तो कहा था बस एक को सौ तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा हमको तो

गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, आहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसी। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका ये गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में बना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं। ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, परम वायु है ये तू।

प्राण सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चेहरा गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी

दोनों देशों ने तेल से जुड़े अपराधों और शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।

0: है, विपक्षी व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार के

करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानव

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एवी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवी कोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नागम्य में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news reporter of Rajdhani Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-yu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: Yeah.